0: ये कहानी नई जरा सुन लो भाई, वो सारी दुनिया से ही ये तो खोई गई, पर किस लिए
1: लग गई अखियां, उम्र बालम उम्र सनम उम्र साजन तुम।

0: अभी हमको है तुमसे प्यार,
1: तो हो गमे के गमे,
0: अब जीना भी है दुश्वार,
1: तो हो गमे के गमे,
0: अभी हमको है तुमसे प्यार,
1: तो हो गमे के गमे,
0: अब जीना भी है दुश्वार,
1: तो हो गमे के गमे।
0: खोया खोया

0: मेहरबा है क्यों तेरी अदाएं,
1: हम ये बातें क्यों तुझे बताएं,
0: मेहरबा है क्यों तेरी अदाएं,
1: हम ये बातें क्यों तुझे बताएं,
0: अजी ये भी तो है इकरार,
1: तो होगा मैं क्या जाने,
0: अब जीना भी है दुश्वार,
1: तो होगा मैं क्या जाने,
0: अजी हमको है तुमसे प्यार,
1: तो होगा मैं क्या जाने,
0: अब जीना भी है दुश्वार।

0: तेरे दिन दार नहीं कटती है रातें का हूँ मैं दीवाना
1: देखो देखो होश लगाना
0: ये अदा का हूँ मैं माफी मार अब जीना भी है दुश्वार
1: तो होगा मैं के जानू
0: अभी हमको है तुमसे प्यार
1: तो होगा मैं के जानू
0: अब जीना भी है दुश्वार
1: तो होगा मैं के जानू
2: बघा श्री रामचंद्र यांनी राज कपूर करता सिनेमा केला होता शम्मी कपूर करता केला होता आणि शशी कपूर करता पण केला होता. याच वर्षी 1954 एहसान या सिनेमात शम्मी कपूर नायिका मुनव्वर सुलताना यार तुसराज कपूर पण होते. दिग्दर्शक होते राजेंद्र शर्मा संगीतकार मदन मोहन. उनकी नजरों का वार क्यों जी कैसा लगा हे गाणं पण बऱ्यापैकी गाजलेलं आहे.

तूने मुझे पुकारा अब न मुखड़ा छुपा। फिरता हूँ मारा मारा आया साजन तुम्हारा गोरी काहे को शर्मा।

सुन जा, मेरी बात मान जा, इधर तो आ जा, अखिया मिला जा, एक दो तीन चार, एक बार कलो प्यार, पाँच छह सात आठ, देखो मेरे बंकेटा तिनक तिनक तिन था, तिनक तिनक तिन था, तिनक तिनक तिन था। हाँ अब तो है छोड़ के गोरी ना जाऊंगा, आए हजार तूफान ठोकर लगाऊंगा, अब तो है छोड़ के गोरी ना जाऊंगा, आए हजार तूफान ठोकर लगाऊंगा।

0: बंदर
1: नहीं,
0: और बंदर घोड़ बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर
1: ना ना ना ना नहीं,
0: वो तो फिर आजा।

0: ये कहानी नई जरा सुन लो भाई, वो सारी दुनिया से ही ये तो खोई गई, पर किस लिए
1: लग गई अखियां।

0: अभी हमको है तुमसे प्यार, अब जीना भी है दुश्वार,
1: तो होगा मैं क्या जानूं,
0: अभी हमको है तुमसे प्यार,
1: तो होगा मैं क्या जानूं,
0: अब जीना भी है दुश्वार,
1: तो होगा मैं क्या जानूं।
0: खोया खोया ये राज तेरी आँखों में क्यों है,
1: देखा देखा अंदाज तेरी बातों में क्यों है,
0: मेरे बाहें क्यों तेरी अदाएं,
1: हम ये बातें क्यों तुझे बताएं,
0: मेरे बाहें क्यों तेरी अदाएं,
1: हम ये बातें क्यों तुझे बताएं,
0: अजी ये भी तो है इकरार,
1: तो होगा मैं क्या जानूं,
0: अब जीना भी है दुश्वार,
1: तो होगा मैं क्या जानूं,
0: अजी हमको है तुमसे प्यार,
1: तो होगा मैं क्या जानूं,
0: अब जीना भी है दुश्वार,
1: तो होगा मैं क्या जानूं।

0: में तेरे दिलदार नहीं कटती है रातें का हूँ मैं दीवाना
1: देखो देखो हो चला गाना
0: इसी अदा का हूँ मैं भागी
1: मार
0: अब जीना भी है दुश्वार
1: तो होगा मैं के जानू
0: अभी हमको है तुमसे प्यार
1: तो होगा मैं के जानू
0: अब जीना भी है दुश्वार
1: तो होगा मैं के जानू
2: बघा श्रीरामचंद्र यांनी राज कपूर करता सिनेमा केला होता शम्मी कपूर करता केला होता आणि शशी कपूर करता पण केला होता. याच वर्षी 1954 एहसान या सिनेमात शम्मी कपूर नायिका मनोहर सुलताना यार तुसराज कपूर पण होते. दिग्दर्शक होते राजेंद्र शर्मा संगीतकार मदन मोहन. उनकी नजरों का वार क्यों जी कैसा लगा हे गाणं पण बऱ्यापैकी गाजलेलं आहे.

जा मेरी बात मान जा, इधर तो आ जा, अखिया में ला जा, एक दो तीन चार, एक बार कलो प्यार, पाँच छह सात आठ, देखो मेरे बंकटा तिनक तिनक तिन था, तिनक तिनक तिन था, तिनक तिनक तिन था। हाँ अब तो है छोड़ के गोरी ना जाऊंगा, आए हजार तूफान ठोकर लगाऊंगा, अब तो है छोड़ के गोरी ना जाऊंगा, आए हजार तूफान ठोकर लगाऊंगा।

साक्षी हूं मैं उस पद का अंत नहीं जिसका आस मेरी है जिसकी दिशा आधार मेरे मन का।

0: नमस्कार, मी ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम बोलतोय. आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं, तुमचा आवाज.
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं. चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया. मुड़ के जब भी देखा, चंदन का चेहरा नजर नहीं आया. गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद.